बैठेगा चैन से अगर, काम के क्या रहेंगे पर, गो न निकल सके मगर, पिंजरे में फड़फड़ाए जा। ज़र्बे किसी के नाम की दिल पे यूं ही लगाए जा, गो न मिले जवाब कुछ, दर यूं ही खटखटाए जा। खोले वो या न खोले दर, उस पे हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना।

उस पे हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर, यानी सदा लगाए जा। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह ताला, वी आर स्लेव्स। आवर जॉब इज टू डू वट अल्लाह ताला हैज ऑर्डर्ड अस टू डू, कीप टैपिंग एट हिज डोर, वेदर ही ओपन्स इट डज नॉट ओपन, व्हाई यू डू वी लुक एट दैट। वी आर मस्ट गो ऑन टैपिंग, एंड वेन द पर्सन कीप्स टैपिंग एट द डोर ऑफ वन हु इज करीम, देन वेन द डोर ओपन्स, देन दिस पर्सन विल बी फ्लडेड विद द बाउंटीज ऑफ दैट करीम। मे अल्लाह तबारक व तआला गिव अस द तौफीक ऑफ मेकिंग अमल। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है।

रहे तलब में सवार सब हैं प्यादा मिसले गुबार में हूँ। रहे तलब में सवार सब हैं प्यादा मिसले गुबार में हूँ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूँ। रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब तो मशगूल कार में हूँ। हर दम करूँ मैं ऐ मेरे बारी अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह।

आ गया सामने रोज़े मुहतरम जिसकी ज़ियारत को या रब तरसते थे हम. समटाइम्स फॉर इयर्स एंड इयर्स द पर्सन हिज डिज़ायरस हिज थर्स्टी टू सी द रोज़ा मुबारक. समटाइम्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ लाइफ टाइम दैट पीपल डू. लुक एट द नंबर ऑफ पीपल दैट गो वॉकिंग for Hajj, thousands of miles away. People go even crawling. There are people going on bicycles, people going on different transports just to get there. Aa gaya samne roza-e muhtaram. Aa gaya samne roza-e muhtaram. जिसकी ज़ियारत को यार अब तरसते थे हम. मेरी नज़रों में तुम हो बड़े मुहतरम या जिबाल अल हरम या जिबाल अल हरम या जिबाल अल हरम या जिबाल अल हरम या जिबाल अल हरम या जिबाल अल हरम يا جبال الحرم يا جبال الحرم يا جبال الحرم يا جبال الحرم آ گیا سامنے روضہ محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. ایک دعا اللہ تعالیٰ کنوے اس with ease, with afiyat, and make maqbool our haziri. Nabi alayhi salatu wasalam must not turn away his face. Nabi alayhi salatu wasalam must be happy with our coming. We must not do anything that will be disturbing or that will be disrespectful or not appropriate for a believer and an ashik of Nabi alayhi salatu wasalam to be doing in Madina Sharif. When we stand before the Nabi alayhi salatu wasalam, we know the man has made so many different kinds of x-rays. What is there that he doesn't x-ray now? X-rays containers, x-rays the body, x-rays everything. So if Allah Tabaraka wa Ta'ala gives Nabi alayhi salatu wasalam's Mubarak eyes the technology to x-ray the heart of the person that's standing at the Rauza Mubarak, so he must go back plenty of istighfar, plenty of tawbah, wash the heart with the rains of istighfar and tawbah and with the rains of tears. Then go and present yourself.

रहूं, मुझको फकत तुझ से हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं, हर दम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार रहूं, हर दम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार रहूं, होश

माँ बस अब मुझे जस्ट वन ऑफ द लाइट्स ऑन। बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, जस्ट वन ऑफ दिस लाइट्स, बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूं महवे ख्वाबे गफलत, बस अब जगा दे, बस अब जगा दे।